प्यारे गुरुदेव सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आपने इस पावन पवित्र शब्द दे विच पैरो महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आया। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आया, पाप के इथे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

वस्तु काया दे अंदर है, अते जेड़े काया दे अंदरों उस वस्तु नु नहीं पहलदे, नहीं ढूंढदे, कहिंदे हो अति मूढ़ हन, अति मूर्ख हन, अते बेताले, उन्हां दी जिंदगी दे विच कोई भी सही चाल नहीं, बेताल लोग हन, मूढ़ लोग हन, मूर्ख लोग हन। सो इस स्टैंडर्ड दे नाल, इस मेजरमेंट दे नाल, इस गेज दे नाल सारी सोसाइटी मूर्ख बन जाती है, क्योंकि बाहर पहलती है। सुगुरु बाबा जी की तालीम सानू समझा रही है कि इस जन्म दे विच तुसी कुछ पाण लई आए से, अते ओ जो वस्तु है ओ तुहातों दूर नहीं। अगर तुहाडा कुछ भी जिंदगी च नुकसान हो गया है, कुछ भी तुहाडा खो गया है, नो मैटर हाउ मच यू फील दैट यू आर ए एब्सोल्यूटली फेल्यूअर, स्टिल वो जो पाउण वाली वस्तु वो तुहाडे अपने ही पास है, वो तुहाडे अपने अंदर है। सो तुसी कुछ भी खोया नहीं है, डिप्रेस होने की, होपलैसनैस च जान की तुहाडे लिए कोई गुंजाइश नहीं छड़ी, क्योंकि आखिरले दम तक वो वस्तु जो तुसी पानी सी वो तुहाडे अपने अंदर, आखिरले दम तक जदों चाहो उस पासे नूं अपनी डायरेक्शन तब्दील कर सकते हो। सो अगर असीं स्पष्ट तौर पे इतना ही गुरु बाबे दा उपदेश समझ लईए ते उसनूं धारण कर लईए कि असीं इस जन्म दे विच कुछ पाण आए सी, अते ओ वस्तु जो पाण आए सी ओ साडे अपने अंदर है। हुण ए सवाल सानू पुछण वाला है कि असीं अपने अंदरों कुछ लभ्या है जां नहीं लभे। अगर असीं अपने अंदरों कुछ नहीं लभ्या तो फिर असीं चाले मूल गवाए, फिर असीं सब कुछ खो के इत्थों जाण वाले लोग हां। अगर असीं अपने अंदरों कुछ नहीं पाया, नहीं खोजिया, तो फिर असीं अंधले लोग हां। तो गुरु बाबा जी फिर सानू देख के हैरान होके ये शब्द उचार के इस तरह गायन करते हैं, अंधले क्या पाया जागाए, ऐ अंधे इंसान तू जगत च आके की पाया है, आओ सारे नाले गाओ, नाले अपने अपने अंदरों अपने अपने आप नू ये पुछो कि वस्तु जड़ी मैं पाउनी सी, महाराज दसदे हन वो मेरे अपने अंदर ही है, उसनू मैं अपने अंदरों पाया है या नहीं पाया, जे नहीं पाया तो मैं की कर रहा हां, की करदा रहा हां, ते अग्गे नूं हुण मेरा की विचार है। आओ प्यार नाल सा

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी उसका पता भी नहीं लगा, उसने पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गल बात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गल बात दे विच ओ थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने उसनु, तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपने घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे हन

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वो परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल का इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया। सुते पे बंदे नूं जो मर्जी आखी जाओ उस ते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उस ते कोई असर नहीं हुंदा, उसमें पता ही नहीं लग गया की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनों कुछ किया जाए तो उसनों भी पता नहीं चल रहा, वो बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनों भी कोई पता नहीं चल रहा की क्या गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हैं, तो फिर की सानू ये गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, असीं फिर भी राम ना बैठे रहिए? वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप कियां, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हुई, जिंदगी उसे तरह दी ही रही कि असि अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है जा नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसको खोजन की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना रचती है, बनाती है, सवार दी है, श्रृंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पाल, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजे है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवा नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ये जिहड़ी देही है ये घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है। अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचने दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है। इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इसनु चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां। वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति के इस दियां इंद्रियां बलशाली हन, हुण ओ धुई फिरदियां हन, ओ खिची फिरदियां हन सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिरदी है, धुई फिरदी है। ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसे दे पास होवे, उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू ए ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। वो उसको रोकना चाहे वो रुके ना, तो किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इसनू अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, तो इसनू उस पासे वल जान नू वरतो जिस पासे वल जान नू तुहानू हदायत कीती जांदी है। उस ट्रेजर लैंड नू जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनू पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नू विगड़न ना दिओ, कदे इस दे स्वभाव विगड़न ना दिओ, इस दी आदतां विगड़न ना दिओ, इस दी एनर्जी नू वेस्ट ना करो, इसनू गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि यह तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूनां तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना अज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ये हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनू मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नू बुलाना हुंदा, सारी संगत उसनू बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जांदी, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहन तो बाद आप सारे बोलो, तो ये पंक्ति आपनू याद हो जाएगी। सब माया मोह
ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਠੱਗੀ ਇਤਆਦ, ਵੈਰ, ਮੇਰ, ਤੇਰ, ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਰ

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज, अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आख रहे हैं, जो शायद साढ़े कभी ख्याल च भी ना दे, गुरु बाबा जी साढ़े जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां, अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी की ऑब्जर्वेशन साडे जीवन के प्रति यह है कि जीवन की विध ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो तो लिख के ते हर वेले सामने रखो, ताकि ये सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हाँ फिजिकली, बेशक असी इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हो गए हाँ, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हाँ, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हां, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता, तो कितनी बड़ी गल है। और इसनु जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नु जरूर पाएगी कि सच मैनु जीना नहीं आता, कि मैनु जीना ही नहीं आता, जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आता की। फिर इसका अर्थ यह होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की विध ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हूं वो गलत नहीं होएगा। फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी के नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नूं एक कदे वंडर कीता होएगा कि मैनू जीना आंदा भी है या नहीं, जीना आंदा भी है या नहीं। मेरे ख्याल च असी ये सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल दे विच असी अपने प्रति ये डाउट भी नहीं कर सकते कि सानू जीना नहीं आता, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू कम्युनिकेट, सब कुछ सानू आता है, तो फिर असं किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विध ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती। गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन में हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नूं
ओ रबी नूर, रबी आत्मा जो साडे जीवन नू देखती है कि उपरों उपरों तो बहुत फले फुले हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन विच की है? आप आसा जी बात सुन दे, मैं आपको फिर सुना देना। फलीए फुलीए बपड़े विचारे देखने बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलीए फुलीए बपड़े भी तन विच स्वा, पर अंदर तन दे विच स्वा है, कुछ भी नहीं राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुनने मिल रहा है कि मैनू जीण दी ही विधि नहीं आती। अज कोई मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आता। आप जी ने कितनी दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पाउंडर किया होगा? ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी दफा ये गल सुनन मिली है, कितनी दफा ये गल ही सुनन मिली है, कितनी दफा किसी ने यह पॉइंट ही रेज किया है या सानू अवेयर करवाया है कि तुहानू ते भी हले जीना भी नहीं आता। पर असी आके महाराज जी नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी असी चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि साडे गुरुदेव हैं। अपने गुरुदेव नू असी क्रॉस भी नहीं कर सकते, उन्हां दे नाल असी डिसएग्री भी नहीं कर सकते कि महाराज जी नहीं आपने लिख कर दिता है, पर ऐसी भी कोई गल नहीं है, जीना सानू आंदा है, यह भी असी कह नहीं सकते क्योंकि सानू पता है कि जो गुरु बाबा जी आखते हैं त्रैकाल सत। सो अज वो मौका है कि असी, मैनू नहीं पता, शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उत्ते एम्फेसिस पा के कही होए कि साड़ी सिचुएशन ए है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी आर, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल वी आर, नो मैटर व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, बट द बॉटम लाइन इज वी डोंट नो हाउ टू लिव। सानू जीना ही नहीं आता, जीवन की बिदना है। प्यार नाल इस मंत्र सुन

प्यारी गल आखी समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किमें पूरे होते हैं, मैनू सुख इस तो किमें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किमें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदियां हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरियां नहीं होंदियां तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आया, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल पर पहुंचते, एक दूसरे को दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो पर्सनल नीड्स जब पूरी नहीं होंगे तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जब मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तो जीना ही नहीं है महाराज जी, असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता।

इतनी डेवलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो आखते हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान के रोगों का इलाज कर ली, इतने बड़े बड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कितने कितने भयानक रोग जो हैं उनका इलाज आसानी के नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोस अच्छी तरह हो सकता है, तो तुसी आख दे जीना नहीं आ। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू जीना आ गया। महाराज दसो, एक शिष्य पुछता है सच्चे पातशाह, दसो फिर किमें नहीं जीना आ गया? असं तो सोचते अं बड़ी तरक्की कर गए, अस डॉक्टर बन गए, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसी आखते जीना नहीं है। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है, कहते हैं

ये संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष ते सारे ही पंखी बैठे हैं। आप जानते हो कि पंखी अपनी अपनी चोग चुग के जदों सूरज लथ जांदा है, रात पैण लगदी है, तां वृक्ष ते आके कट्ठे हो जांदे हैं। इसे तरह यह संसार वृक्ष है, 84 लख जूना विचों परमदा परमदा अपने कर्मा दा खटिया खांदा खांदा ए वृक्ष रूपी इस संसार ते आउंदा है मनुष्या जन्म प्राप्त करके। जिस तरह पिंडां विच शहरां विच हर एक मनुख ने अपना अपना घर बनाया है, इसे तरह वृक्ष ते भी अपने अपने आलने बनाए होंदे हन। पंखियां ने ओ आके बैंदे हन ते जां रात बीती सवेरे अपने अपने राही पैंदे हन, उड़ जांदे हन। इसे तरह ए मनुष्या जन्म भी एक वृक्ष है। मनुष्या जन्म पंछी रूप होके संसार ते आउंदा है, मनुख अपने अपने कर्म भोग भोगदा होया। जिन्हां ने तां भाई इत्थे आके अपना जीवन मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत मिठा बोलदे हन, नेव चलदे हन, अपनी किरत कमाई विचों चंगे पासे भले पासे लाउंदे हन। सास ग्रास नाम जप के जो जांदे हन उन्हां दा आउणा सफल हो जांदा है, ते जेड़े इत्थे आके माड़े कर्म करके जांदे हन उन्हां नूं फिर 84 लख जून दे गेड़े विच दुख भोगने पैंदे हन। इस लई हजूर कहिंदे हन भाई ए मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, इस नूं जप जप के सफल करना। जिस तरह दिन चढ़दियां पंछी अपनी अपनी चोग चुगन लई अपने अपने कर्मां दा खटिया खाण लई उठ जांदे हन, इसे तरह जदों काल रूपी सूरज चढ़दा ते मनुख भी फिर ए पंज भूतक शरीर छड के तुर जांदा। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे हन किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार, किदे नाल दोस्ती करिए। ख्याल कीता हो सकदा है कि राजा सुखी होवे पर ओ तां सब तो दुखी है। हो सकदा महल माड़ियां विच रहण नाल कोई सुख प्राप्त होवे, ओ भी नहीं है। हो सकदा चंगे बस्तर पहनन नाल जां गहने पहनन नाल सुख मिल जाए, ओ भी नहीं है। क्योंकि सुख तां हरि दे नाम विच है, सुख तां परमेश्वर दी भगती विच है। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे हन सब जग

बाजार है। इस बाजार विच कई तरह के सौदे पे। गुरु नानक सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं, बाजारी बाजार में आए कढे बाजार। इस संसार रूपी बाजार विच अनेकां बाजार हैं जिथे जीव विचर रहे हैं। ये सौदा खरीदन लई आया, पर कई वेरा ऐसा भी हुंदा है कि घर तो चलता है कुछ सौदा खरीदन लई, ते खरीद के कुछ होर ले आउंदा है। क्योंकि इस संसार विच वस्तुआं ही ऐसियां पईयां हन कि जो ये घर तो सौदा खरीदन लई चलिया सी, वो सौदा इसनू विसर ही गया। इस बाजार विच केड़ियां वस्तुआं हन? गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे न, बाजारी बाजार में आए कढे बाजार। गावे राजे राणियां बोले आल पताल, लख टक्कियां के मुंदड़े लख टक्कियां के हार। ते हजूर कहिंदे न, जिन्हां पदार्थां दे मगर तू घूम रहे हैं, कादे लई? इस शरीर विच हार पाण लई। लख टक्कियां के मुंदड़े लख टक्कियां के हार, जित तन पाई है नानका से तन होवे शार। इस शरीर नू सजाउण लई तू बड़ियां वस्तुआं खरीद रहे हैं, कदे तू अपनी आत्मा नू नहीं सजाया, कदे तू अपनी आत्मा नू नाम दा भोजन नहीं दिता, शब्द दे गहने नहीं पाए, ता फिर तेरा संसार ते आउना किवें सफल हो सकदा? क्योंकि लख टक्कियां के मुंदड़े लख टक्कियां के हार, जित तन पाई है नानका से तन होवे शार। ए शरीर तो एक दिन मिट्टी हो जाएगा, सुआ बन जाएगा, एक स्वाद ही मुट्ठी है ये शरीर। इसलिए हजूर कहंदे हन, भाई इस शरीर लई तू बहुत कुछ करदा है, क्योंकि मनुख सौंदा है शरीर लई, खांदा है 36 प्रकार दे भोजन इस शरीर लई, चंगे चंगे सोने वस्त्र पहनदा कादे लई? शरीर लई। आख्या अज तक तू सब कुछ शरीर लई कीता है, पर जिस आत्मा दे आसरे ए शरीर चल रहा, उस आत्मा नू तू भुखिया ही मार देता, उस आत्मा नू कदे नाम दा भोजन ना देता, ए ता तन शार हो जाएगा। इथे ता जो कुछ नजर आ रहा है सब कूड है। वेखदे हो ना, मनुख चला जाए संसार तो, ते किवें अर्थी जा रही हुंदी है, उस वेले मनुख दा मन निर्मल हुंदा, उनू याद आउंदी है मौत कि मैं भी एक दिन जाना है। पर जदों शमशान भूमिका तो बाहर निकलता है, ते फिर ओही गल्लां, ओही निंदिया चुगली, ओही सब कुछ फिर मोह माया दे जाल विच फस जांदा है। आख्या जे परमेश्वर नू याद रखना है तो मौत नू चेते रख। धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा दरबार सजिया होया है। राजा आया दर्शन करन लई, ते देखिया इत्थे सारे ही नर नारी बिरध बच्चे जवान सब बैठे हन, जुड़े हुए हन। राजे दे मन विच शंका हो गई, भई गुरु भी जुबा अवस्था दे, बच्चे बच्चियां भी इत्थे बैठे हन, बिरध भी बैठे हन, बच्चे भी जुड़े बैठे हन, ते ए थिर किवें रहिंदे होणगे? क्योंकि मन तो हर वस्तु नू वेख के लुभाए मान हो जाता है। ते अंतर जामी धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह राजे दे दिल दी गल नू बुझ गए, भाई राजे दे मन

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

गया। बहुत धनाढ्य आचारवंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग परीत।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलदी हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दिए मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगा, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है। कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

सो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार कड़ी ते पुकार सुनेगा ना बस मंगता मंगी जाए मंग बार बार दोहराई जाए किवे मंगे बबीहे दी तरह उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा मंगी जांदा ना दिन विंद है ना रात विंद है वो पुकारा करी जांदा बबीहा बोल रहा सी किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना कहना एक बूंद चाहिए एक बूंद ली बोल रही मंगती का पहला गुण है जी कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है नदियां नाले ने सागर हैं तालाब हैं वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले कहने नहीं ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते मैनू तो एक बूंद चाहिए एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं ख्याल करियो जी एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले कहना जा जाके सौ आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे क्यों नींद हराम कर रहे बबीहा नहीं मुड़िया जी बबीहा बोलता जा रहे आखिर की होया वो एक लिव नाल बोल रहा सी एक कोलो मंग रहा सी बाणी विच फैसला है जी

कह रहे हैं नहीं है, चला जा। कहना नहीं, कुछ ते दे के तोर, कुछ ते मेरी चोली पा, मैं तेरे को लाए बगैर नहीं जाना। इना ठीठ बनदा है कई बार मालिक किनिया गल्लां करदा, देन वाला बहुत गल्लां करदा है पर वो बर्दाश्त करे, हर गल नूं सुने, क्योंकि ठीठ बनदा। जब तक ठीठ नहीं बनदा तद तक दात नहीं मिलनी। पावो दान ठीठ होए मन, ठीठ बन के मंगी जा मंगी जा मंगी जा। हुण गल आ गई तीसरे गुण दी। तीसरा गुण है जी मंगता डर ना छड़े। किवें ताटी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े। दर फड़ के बह जाए ते दर ना छड़े। हे मालिक मंग रहे तीठ बन गए, दर नहीं छड़ना, दात लैके जान। पर हुंदा की है, असी सिर्फ मंगना ते जान लेने, मंगना आउंदा नहीं। मंगना की है ए भी पता नहीं, मंगना किवें है ए भी नहीं जानदे। ते जिहड़े मंगते दे गुण ने ओह ते साडे अंदर है ही कोई नहीं। जे होवे च किसी अंदर एक आ जांदा है, लो जी मंगना है, मंगी जांदा। कुछ समा मंगिया नहीं मलिया चला गया। किसे विच दूजा गुण आ जांदा है, तीठ बन के बह जांदा है। इतना टीठ बन गया कि मंगी जा रहे हैं नहीं मिले, आओ भी चला गया। तीसरा गुण सी ग्रहण नहीं करते कि जेड़ा बड़ा जरूरी है। तीसरा गुण है मंगता दर ना छड़े, क्योंकि कई बार हुंदा कि असी मंगी जाने टीठ भी बन जाने, जो दात लैण दा समा आउंदा उदों असी दर छड़ के चले जाने, बस उदों सानू ओ दात नहीं मिलदी। ताड़ी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े, दर नहीं छड़ के जाना भावें कुछ हो जाए। साहब कहने ना आखिर विच